बैरण को आसंगरिया। पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन शतर हमारे मारिये। आप हाथ दे मुझे उमरिये, मरण काल का त्रास निवरिये। हो जो सदा हमारे पश्चा, श्री अस्तु जो करे हो रक्षा। राख लिहो मोहरा कनहारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दास कंता। काल पाए ब्रह्मा बबतरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैन जशन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिव कण को शिव गुण सुख दियो, शत्रण को पल मोह बद कियो।

लिख लिख पढ़िया ते ता करिया बहु तीर्थ भविया ते तो लव्या बहु भेख किया देही दुख दिया सोहवे जी अपना किया अन न खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बसरना पैरे अणस कैरे मूण विगुता क्यों जागै गुरमन सूता।

रहाऊ। मेरी हरो विपत जान करो सुपाई, चरण न छाडो शरीर कल जाई। कहो रविदास परों तेरी सांबा, बेग मिलो जान करना बिलंबा। कह रविदास परों तेरी सांबा,

चौथे पद में सहज है, गुरमुख भले पाए, निर्गुण नाम दान है, सहजे सो जीओ। गुणवंती सलाया सच्चे सच्ची सोए, भुलिया सहज मिलाई सी सद मिलावा होए। बिन सहज सब अंध है, माया मोह गवारो, सहजे ही सो जी पई सच्चे साध पार। आपे बख्श मिलायन पूरे गुर करतार, सहजे अदिष्ट पछाणिय निरपो ज्योत निरंकार। सबना जिया का एक दाता, ज्योति ज्योत मिला बनहार, पूरे सब सलाई है जिसता अंत न पारा वार। ज्ञानिया का तन नाम है, सहज करे व्यापार, अंधन लहा हर नाम लैन अकुट परे भंडार। नानक तो न आवे दिए दे बनहार। श्री राग मिला तीजा, सतगुर मिल गए फिर न पवे जन मरण दुख जाए, पूरे शब्द सब सोजी होई हर नाम में रह समाए। मन मेरे सतगुर सो चितलाए, निर्मल नाम सदनाव तनु आप सही मन आए। राहो हर जियो राखो अपनी सरनाई, ज्यों राखे त्यों रहना, गुर कै शब्द जीवत मरै गुरमुख भजल तरना। बड़े भाग नाओ पाइय गुरमत शब्द सुहाई, आपे मन वस्या प्रभु करता सहजे रिया समाई। एक ना मनमुख शब्द न पावे, बंधन बंध पवाया, लख 84 फिर पर आवै बिरथा जन्म गवाया। भगता मन आनंद है सच्चे शब्द रंग राते, अंधन गुण गावे सद निर्मल सहजे नाम समाते। गुरमुख अमृत बाणी बोले सब आत्म राम पछाणी, एको से मन एक राध है गुरमुख अकथ कहानी। सच्चा साहिब सेवी है गुरमुख बसे मन आए, सदा रंग राते सच्चे अपनी कृपा करे मिलाए। आपे करे कराए आपे, एक ना सुत्या दे जगाए, आपे मेल मिलाए दा नानक शब्द समाए। श्री राग मिला तीजा, सतगुर सेविया मन निर्मला भये पवित शरीर, मन आनंद सदा सुख पाया भेटिया गहर गंभीर। सच्ची संगत वैसना सच नाम मन तीर, मन रे सतगुर सेव संग, सतगुर सेविया हर मन बसै लगे ना महल पतंग। रहाओ सच्चे साध पत उपजै सच्चे सच्चा नाम, जिन्नी हमें मार पछाणिया हो तिन बलियारे जाओ। मन मुख सच न जाननी, तिन ठौर ना कतू थाओ, सच खाना सच पहनना सच ही विश्वास, सदा सदा सलाहना सच्चे शब्द निवास। सब आत्म राम पछाणिया गुरमति निज घर वास, सच वेखण सच बोलना तन मन सचा होए सच्ची साखी। उपदेश सच सच्चे सच्ची सोए, जिन्नी सच वसारिया से दुखिया चले रोए। सतगुर जिनी ना सेवियो से कित आए संसार, जम दर बदे मारिए कूक ना सुने पकार। व्यर्था जन्म गवाया मर जमै वारो वार, हो जग जलता दे कै भज पै सतगुर सरना। सतगुर सच दड़ाया सदा सच संजम रहना, सतगुर सच्चा है बोता सब दे भजल तरना। लख 84 फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त ना होई, पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके दूजे पाए पत कोई। सतगुर शब्द सुनाया बिन सच्चे शब्द न कोई, जो सच्चे लाए से सच लगे ने सच्ची कार करन। ते ना निज कर वासा पाया सच्चे महल रहन, नानक भगत सुखी है सदा सच्चे नाम रचन। श्री राग मल्ला पंजवा, जा को मुश्किल अत बनाया ढोई कोई ना दे, लागू होए दसमणा साख पे भज खले। सबो भजे आसरा चुके सब सराओ, चितावै उस पार ब्रह्म लगे न तत्ती वाओ। सह नताणिया का ताण आए न जाने, थिर सदा गुर शब्दी सच जान। रहाओ जे को होवै दुबला नग पुख की पीर, दमड़ा पले ना पवै ना को देवै तीर। स्वार्थ स्वाओ ना को करे ना किछ होवै काज, चित आवै उस पार ब्रह्मता निश्चल होवै राज। जा को चिंता बहुत बहुत दही ब्यापै रोग, गृह सुख ठंब पलेटिया कदे हरक कदे सो। कौन करे चौकुंट का घड़ी न वैसण सोए, चित आवै उस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए।
काम क्रोध मोहे बस कीन्हा, किया कृपण लो प्यार, चारे किलबुख उन अग किए जुआ असुर संगार। पोते गीत कवित किछु कदे न करन तरिया, चितावै उस पर ब्रह्म ता निर्मल सिमरत रिया। शास्त सिमरत वेद चार मुखाकर विचरे, तपे तपीसर जोगिया तीर्थ गमन करे। खटकर्मा ते दुगुणे पूजा करता नाय, रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए। राज मिलख सिखदारियां रस भोगण विस्तार, बाग सुहावे सोने चले हुकम अपार। रंग तमस बहु विधि चाहे लगे चाहे लग रहा, चित न आयो पर ब्रह्म ता सर्प की जून गया। बहुत नाड आचार बंत शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाइया साजन संग प्रीत। लस्कर तर्क संबंध बंद ज्यो ज्यो सगली कीत, चित नायो पार ब्रह्म ता कड़र सतल दीत। काया रोग ना शिदर किश ना किश काड़ा सोग, मृत नावी चित तिस एनस भोगै भोग। सब कुछ की तोन अपना जी न संकत रिया, चेतना आयो पार ब्रह्म जं कंकर वस भरिया। कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे सा संग, ज्यो ज्यो ओह बधाईए त्यों त्यों हर स्यो रंग। दुहां सिरियां का खसम आप अवरना दूजा थाओ, सतगुर तुठे पाया नानक सच्चा नाओ। श्री राग मल्ला मनमा कर मनमा, जानो नहीं पावै कमन वाता। मन खोज मार्ग राहो ध्यानी ध्यान, लावै ज्ञानी ज्ञान कमावै प्रभ के नहीं जाता। भगवती रहत जुगता जोगी कहत मुक्ता, तपसी तप है राता। मोनी मोन धारी सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता। भगत नवे प्रकारा पंडित वेद पुकारा, गृहस्थी गृहस्त धर्माता। एक शब्दी बहु रूप अवधूता, कापड़ी कौते जगूता एक तीर्थ नाता। निरहार वर्ती आपरसा, एक लूक न देवै दरसा। एक मन ही ज्ञाता घाट नक नहीं कहाया, सब कहते हैं पाया। जिस मेले सो भगता सगल उक्त पावा, त्यागी शरण पावा नानक गुरु जन प्राता। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर आ जोगिया, तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत न पाया सुरग मच प्याल जीव। हों वारी हों वाणे कुर्बान तेरे नाम नू राव। तो संसार पाया सिरे सिर धंधे लाया, वेख्या कीता अपना कर कुदरत पासा। ढाल जियो प्रगट पहारे जापदा, सब नावै नो प्रतापदा। सतगुर वाज ना पायो सब मोही माया जाल जियो। सतगुर को बल जाइए जित मिलिए परम गत पाइए। सुर नर मुन जन लोच दे सो सतगुर दिया बजाए जियो। सात संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखाणी है, एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बजाए जियो। ओ जगत परम भुलाया आपो तुद खो आया, प्रताप लगा दुहागणी भाग जना के नाए जियो। दुहागणी क्या निशानिया, कसम खुथिया खसम हो कुथिया फिरे नवाणिया। मैले बेस तिना कामणी दुखी रहन बिहाय जियो। सुहागणी क्या कर्म कमाया, पूर्व लिखिया फल पाया। नदरे करे कै अपनी आपे लै मिलाए जियो। हुकम जिना नो मनाया तिन अंतर शब्द बसाया। सैया से सुहागणी जिन सह नाल प्यार जियो। जिना पाणे कार साया तिन बिचों परम चुकाया। नानक सतगुरु ऐसा जानिए जो सब सह ले मिलाए जियो। सतगुर मिलया फल पाया जिने विचों अह करण चुकाया। दुरमत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो। अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां रे दे समाणिया, सुख सेवा अंदर रखिया अपनी नदर करे निस्तार जियो। सतगुर मिलया जानिए जित मिलया ना बखाणिए, सतगुर वाज ना पायो सब थकी रकम कमाए जियो। हकी कर्म कमाए जियो हो सतगुर बिटों कमाया, जिन भ्रम भुला मार्ग पाया।
ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲੈ ਰਲਾ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ, ਤਿੰਨ ਕਰਤਾ ਆਪ ਲਕਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਾ ਕੋ ਜੋ ਧਰੀ ਕਰਤਾ ਜੀਓ। ਆਪੇ ਖਸਮ ਨਵਾਜਿਆ, ਜੋ ਪਿਣ ਦੇ ਸਾਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੀ ਪਹਿਜ ਰੱਖੀਆਂ, ਦੋਏ ਕਰਮਸਤਕ ਧਾਰ ਜੀਓ। ਸਭ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਤਾਇਓ, ਸਭ ਲੋਕ ਕਰੈ ਜਕਾਰ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਗਣਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਬਿਰਸ ਮਾਰਿਆ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਕਹਿ ਰਾਖਿਓ, ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਹੋ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ, ਜੀ ਇਛੜਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਸਾਹ ਪਸਾ ਸਿਰ ਖਸਮ, ਤੂੰ ਜਪ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਨਾਉ ਜੀਓ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਆਪ ਪਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਖੇਲ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ, ਸਭ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸੇ ਬਜਾਏ ਜੀਉ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ, ਤਿਤੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲੈ ਸਮਾਏ ਜੀਉ। ਗੋਪੀ ਨੈ ਗੋਵਾਲੀਆ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਗੋਏ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਹੁਕਮੀ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਆ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਭਾਨ ਸਵਾਰ ਜੀਉ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉਂ ਚਿਤਲਾਇਆ, ਤਿੰਨੀ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਚੁਕਾਇਆ, ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਜੀਓ। ਤੇਰੀਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਹਿ ਵੜਿਆਈਆਂ, ਅਣਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਮਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੈ ਪਾਏ ਮਨਾਏ ਸੋਈ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ, ਤਿਸ ਦੇਵੜ ਵਰਨਾ ਕੋਏ ਜੀਓ ਰਹੋ। ਗੋਸਾਈ ਮਹਿੰਡਾ ਇਟੜਾ, ਅੰਬ ਅੰਬ ਅਵੈ ਥਾਵੋ ਮਿੱਠੜਾ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਭ ਸੱਜਣਾ, ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀਉ। ਤੇਰੇ ਹੁਕਮੈ ਸਭ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਤ ਕਾ ਹੱਲ ਜਵਾਇਆ, ਨਾਉ ਬੀਜਣ ਲੱਗਾ ਆਸ ਕਰ, ਹਰ ਬੁਹਲ ਬਖਸ਼ ਜਮਾਏ ਜੀਉ। ਹੋ ਗੁਰ ਮਿਲ ਇੱਕ ਪਛਾਣਦਾ, ਦੁਆ ਕਾਗਲ ਚਿੱਤ ਨ ਜਾਣਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੈ ਕਾਰੇ ਲਾਇਨ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਨਵਾਹੇ ਜੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਓ ਪੰਚੋ ਭਾਈਓ, ਗੁਰਦੀਵਾਨ ਕਵਾਏ ਬਣਾਈਓ, ਹੋ ਹੋਆ ਮਹਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਨਾ ਦੇ ਪੰਜ ਹਰੀਕ ਜੀਓ, ਹੋ ਆਇਆ ਸਾਮੈ ਤੇ ਹੰਡੀਆ, ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਮਝੇਰੇ ਮਹਿੰਡੀਆ, ਕੰਠ ਕੋਈ ਕੱਢਣਾ ਹੰਗਈ, ਨਾਨਕ ਬੁੱਠਾ ਘੁੱਗ ਘਰਾਓ ਜੀਓ। ਹੋ ਵਾਰੇ ਘੁੰਮਾਂ ਜਾਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਹਾ ਤੁਤਿਆਏ ਦਾ, ਉੱਜੜ ਥਿਓ ਵਸਾਇਓ, ਹੋ ਤੁਧ ਵਿੱਟੋ ਕਰਵਾਣ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਠੈ ਨਿੱਤ ਧਿਆਏ ਦਾ, ਮਰ ਚਿੰਦੇ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਦਾ, ਸਭੇ ਕਾਇ ਸਵਾਰ ਲਾਹੇ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਸਭੋ ਧੰਦੜਾ, ਗੋਸਾਈ ਸੇਵੀ ਸੱਚੜਾ, ਨੌ ਨਿਦਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਵਧਾ, ਸਿੱਖ ਜੀਓ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੂੰ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰਵੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਖ ਵਖਾਲਿਆ, ਮਸਤਕ ਧਾਰਕ ਹੈ ਹੱਥ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਬਦੀ ਸੱਚ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਲਹਿਦਾ ਭਾਲਕ ਹੈ, ਪੈਰ ਧੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਭੇਜਦਾ, ਤਿਸ ਨਿਬ ਨਿਬ ਲੱਗਾ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰ ਪੈ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ ਨਾਂ ਦੜਾਇਆ, ਸਭ ਮੁਕਤ ਹੋਆ ਸੰਸਾਰ ਲਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਬੇੜੀ ਚੜ ਜਿਓ। ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੇਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੀਓ, ਦੇਹ ਕੰਨ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ, ਠੋਕ ਵਜਾਏ ਸਭ ਡਿੱਠੀਆਂ, ਤੁਸ ਆਪੇ ਲਾਇਨ ਛੁੜਾਏ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ, ਪੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੈ ਰਿਆਮ ਦਾ, ਸਭ ਸਕਾਲੀ ਉੱਠੀਆਂ, ਇਹ ਹੋਆ ਹਲਮੀਰਾ ਜੀਓ। ਚਿਮ ਚਿਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ, ਬਹੁਮਾਣ ਕਿਆ ਤੁਧ ਉਪਰੇ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਪਾਹੇ ਥਾਏ ਜੀਓ। ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਪਕਸਲ ਤੇਰੀਆਂ, ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆਂ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸੁਖਦਾ ਧਿਆ, ਮੈਂਗਲ ਵਿੱਚ ਲਿਹੋ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ। ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਅਵਰਨਾ ਭਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਦੀਪ ਲੋ ਪਿਆ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਥਾਂ ਤਨੰਤਰ ਰਵ ਰਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸੱਚ ਉਧਾਰ ਜੀਓ। ਹਾਂ ਗਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲ ਬਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦਮਾਲੜਾ, ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਦੋ ਪੈਠਾ ਵੇਖੇ ਆਪ ਜੀਓ। ਬਾਤ ਵਜਨ ਟਮਕ ਭੇਰੀਆਂ, ਮਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ, ਨਿਹਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਗੁਰਤਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗੰਢ ਜੀਓ। ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਇਆ, ਘਰ ਜਾਸਨ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਵਰਨਾ ਚਿਹਨਾ ਬਹਰਾ, ਹਰ ਦਿਸੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਹਰਾ, ਸੋਹਣਾ
सुन तुझे त्याई दे तेरे भगत रते गुणदास जियो। मैं जुग जुग दए सेवड़ी गुर कट्टी मेड़ी जेवड़ी। हाँ बहड़ा छिंजना नचो नानक सरल दा पाल जियो। सतगुर प्रसाद श्री राग मल्ला पहला पहरे कर पहला पहले पहरे रहण के बनजारिया मित्रा हुकम पाया गर्भास उर्द तप अंतर करे बनजारिया मित्रा खसम सेती अरदास। खसम सेती अरदास बखाने उर्द ध्यान लिबलागा नाम अरजाद आया कलवीतर बहुत जैसी नागा। जैसी कलम बुढ़ी है मस्तक तैसी जीड़े पास। कहो नानक प्राणी पहले पहरे हुकम पाया गर्भास दूजे पहरे रहण कह बन जा रहा मित्रा। बिसर गया ध्यान तू हथ नचाइए बन जा रहा मित्रा। ज्यों जसुदा कर कान हथों हथ नचाइए प्राणी मात कहे सुत मेरा। चेत चेत मूड मन मेरे अंत नहीं कछ तेरा। जिन रच रचिया तिसे न जाने मन भीतर तर ज्ञान। कहो नानक प्राणी दूजे पहरे विसर गया ध्यान तीजे पहरे रहण के बनजारिया मित्रा। तन जोवन सुचित हर का नाम न चेते बनजारिया मित्रा। बदा छुटे जित हर का नाम न चेते प्राणी बिकल भया संग माया। तन स्यों रता जो नमता इला जन्म गवाया धर्म छेती व्यापार। ना कीतो कर्म न कीतो मित को नानक तीजे पहरे प्राणी। धन जोवन सुचित चौथे पहरे रहण कह बनजारिया मित्रा। लावी आया खेत जा जम पकड़ चलाया बनजारिया मित्रा। किसे न मिलया भेत भेत चेत हर किसे न मिलो। जा जम पकड़ चलाया झूठा रुदन हुआ दुआला। खिनवे भया पराया साई वस्त प्राप्त हुई जिस स्यों लाया हेत। कौ नानक प्राणी चौथे पहरे लावी लुणिया खेत। श्री राग मल्ला पहला पहले पहरे रहण कह बन जा रहा मित्रा। बालक बुद्ध चित खीर पिए खिलाइए बन जा रहा मित्रा। मात पिता सतहेत मात पिता सुतने हुकनेरा। माया मोह सवाई संजोगी आया कृत कमाया कर्णिकार कमारी। राम नाम बिन मुक्त न होई बूढ़ी दूजे हेत। कहो नानक प्राणी पहले पहरे छुटेगा हर चेत। दूजे पहरे रहण कै बन जा रहा मित्रा। पर जो बनो मैं मत एनस काम व्याप्या बन जा रहा मित्रा। अंदले लाभ ना चित राम नाम कटंदर नाही होर जाने रस कस मीठे। ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जम मरहुगे झूठे। तीर्थ वर्त सुसंजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा। नानक भाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापे दूजा। तीजे पहरे रहण कै बन जा रहा मित्रा। सरहंस उल थड़े आए जोबन कटे जरुआ। जने बनजारिया मित्रा आप कटे दिन जाए अंतकाल पछतासी। अंदले जा जम पकड़ चलाया सब कुछ अपना कर कर राखिया। खिन मैं भया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाण कर अवगण पछताए। कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चेतो लिवलाए। चौथे पहरे रहण के बनजारिया मित्रा। बिद भया तनकीन अखियां दना दी सही बनजारिया मित्रा। कन्नी सुने ना बैन अखियां द जीव रस नाही रहे प्रा को ताना। गुणंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना। खड़ पक्की कुड़ भजे बिनसे आए चले क्या माण। कौ नानक प्राणी चौथे पहर है गुरमुख शब्द पछाण। ओढ़ आया तिन साया बनजारिया मित्रा। जर जरवाणा कानो एक रति गुणा समाणिया बनजारिया मित्रा। आप गुण खड़ सुन वन गुण संजम जावे चोट न खावे ना तिस जमण मरना। काल जाल जम जो ही न साके पाए भगत पै तरना। पत सेती जावे सह समावे सगले दुख मिटावे। को नानक प्राणी गुरमुख छूटे साचे ते पत पावे। श्री राग मल्ला चौथा पहले पैरे रहण के बनजारिया मित्रा। हर पाया उधर मझार हर त्यावे हर उचरै बनजारिया मित्रा। हर हर नाम समार हर हर नाम जपे राधे बिच अग्नि हर जप जीव्या। बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थी बया। जिसकी बस
तिस चेतो प्राणी कार हृदय गुरमुख विचार को नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिए कृपाधार। दूजे पहरे रहन के बनजारे मित्रा मन लगा दूजे पाए मेरा मेरा कार पालिए बनजारे मित्रा ले मात पिता गल लाए लाभ है मत पिता सदा गल सीती मन जाने खट खवाए जो देवे तिसे न जाने मूड़ा दिते नूल बटाए कोई गुरमुख होवे सो करे विचार हर त्यावै मन लिबलाए कह नानक दूजे पहरे प्राणी तिस काल न कबू खाई तीजे पहरे रहन कै बनजारिया मित्रा मन लगा आल जंजाल धन चितवै धन सचवै बनजारिया मित्रा हर नामा हर ना समाल हर नामा हर हर कदे ना समाले जी होवे अंत सुखाई कहो हे धन संपै माया झूठी अंत छोड़ चलिया पछताई जिसनो कृपा करे गुर मेले सो हर हर नाम समाल कहो नानक तीजै पहरे प्राणी से जाए मिले हर नाल चौथे पहरे रहन कै बन जा रहा मित्रा हर चलन वेला आदि कर से वो पूरा सत गुर मजारे मित्रा सब चली रहन व्यादि हर से वो खिन खिन ढिल मूल ना करो जित अस्थिर जुग जुग होवो हर सेती सद मानो रलियां जन्म मरण दुख होवो गौर सतगुर स्वामी भेद ना जानो जित मिल हर भगत सुखांदी कहो नानक प्राणी चौथे पहरे सफल हो रहन भगतां दी श्री राग महला पंजवा पहले पहरे रहन कै बनजारिया मित्रा धर पाइता उदरै माहे दसी मासी मांस किया बनजारिया मित्रा कर मुहलत कर्म कमाहे मुहलत कर दीनी कर्म कमाने जैसा लिखत त्रपाया मात पिता भाई सुतवंता तिन पीतर प्रभु संजोया कर्म सुकर्म कराए आपे इस जनते बस किश नाहे को नानक प्राणी पहले पहरे तार पाया इता उदर है माहे दूजे पहरे रहन कै बनजारे मित्रा पा जवानी लहर दी मोरा भला ना पछाण ही बनजारे मित्रा मन मदा अहमे मोरा भला ना पछाणे प्राणी आग गए पंथ करारा पूरा सत गुर कहू ना सी बया सिर ठाड है जम जंदारा धर्म राय जा पकरस बबरे तब क्या जवाब करे कहो नानक दूजे पहरे प्राणी पर जो मन लहरी दे तीजे पहरे रहन कै बनजारे मित्रा बेखो संचय आंध ज्ञान पुत्र कलत्र मोह लपटिया बनजारे मित्रा अंतर लह लवान अंतर लहर लवान प्राणी सो प्रभ चितना आवे साह संगत स्यों संग ना किया बहु जोनी दुख पावे सृजना विसारिया स्वामी एक निमुख न लागो ध्यान कहो नानक प्राणी तीजे पहरे सिख कहो नानक प्राणी तीजे पहरे बिख संचय अंत ज्ञान चौथे पहरे रहन कै बनजारिया मित्रा दिन नेड़े आया सोए गुरमुख नाम संभाल तू बनजारिया मित्रा तेरा दरगाह बेली होए गुरमुख नाम संभाल प्राणी अंते होए सकाई ए मोह माया तेरे संग ना चालै झूठी प्रीत लगाई सगली रहन गरी अंधारी सेव सतगुर चानन होए का नानक प्राणी चौथे पहरे दिन नेड़े आया सोई लिखिया आया गोबिंद का बनजारिया मित्रा उठ चले कमाणा साथ एक रति बिलमना देवनी बनजारिया मित्रा उन्नी तकड़े पाए हाथ लिखिया आया पकड़ चलाया मन मुख साध वेले जिन्नी पूरा सतगुर सेव्या से दरगह सदा सुहेले कर्म धरती शरीर जुग अंतर जो बोवै सो खात कहो नानक भगत सुहै दरबारे मन सदा पवात श्री राग मल्ला चौथा का दूजा शांति कुंकार सतगुर प्रसाद मुदयाणी पेड़ी है क्यों कर हर दर्शन पिखै हर हर अपनी कृपा करे गुरमुख सवरड़े कम सिखै सवरड़े कम सिखै गुरमुख हर हर सदा त्याय सइया बिच फिर सहेली हर दरगह बहान डुलाए लेखा धर्म राय की बाकी जप हर हर नाम करखै मुदे आणी पेड़िए गुरमुख हर दर्शन दिखाए ब्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुख हर पाया ज्ञान देरा कटिया गुर ज्ञान प्रचंड बुलाया बलिया गुर ज्ञान देरा बिन सियार रतन पदार्थ लाता
हमें रोग गया दुखला था पापै गुरम खादा काल मूर्त बर पाया बनासी ना कदे मरण जाया ब्याहुआ मेरे बावला गुरमुखी हर पाया हर सत सते मेरे बावला हर जन मिल जंज सुहंदी पेवकड़े हर जा पसेली बिच सोरड़े करी सुहंदी सोरड़े बिच खरी सुहंदी जिन पेवकड़े नाम समालिया सब सफल्यो जन्म त्रिहांदा गुरमुखो जिना मन जिन पासा टालिया हर संत जना मिल कारज सोया वर पाया पुरखो नंदी हर सत सत मेरे बबूला हर जन मिल जंज सुहंदी हर प्रभ मेरे बावला हर देवो दान मैं दाजो हर कपड़ो हर सोभा देवो जित सबर है मेरे काजो हर हर भगती काज सिला गुर सत गुर दान दवाया खंड ब्रह्मंड खंड ब्रह्मंड हर शोभा हुई ओ दान रले रलाया होर मन मुख दाज के रख दखल है सो कूड़ अहंकार कच पाजो हर प्रभ मेरे बावला हर देवो दान मैं दाजो हर राम राम मेरे बावला फिर मिल धन वेल बदंदी हर युग है जुगो जुगो युग है जुग सद पीढ़ी गुरु चलंदी युग युग पीढ़ी चले सतगुर की जिनी सतगुर नाम त्याया हर पुरख ना कभी विसै जावे नित दीवे चढ़े सवाया नानक संत संत हर एको जप हर हर नाम सुहंदी हर नाम राम मेरे बावला फिर मिल धन बिल वधांदी श्री राग महला पंजम शांति ओंकार सतगुर प्रसाद मन प्यारिया ज्यो मित्रा गोविंद नाम संभाले मन प्यारिया जी मित्रा हार बह तेरे नाले संग साई हर नाम त्याई बिथा कोई न जाए मन चिंदे सी फल पावै चन कमल चित लाई जल थल पूरिहा बनवारी घट घट नजर निहाले नानक सिख दे मन प्रीतम साह संग परम जाले मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे मन प्यारिया जी ओ मित्रा बिख सागर संसारे चन कमल कर बोहित करते ससा दुख ना व्यापै गुरपुरा भेटै बड़भागी आठ पहर प्रभ जापै आ जुगादि सिख स्वामी भगता नाम उधारे नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हर झूठ पसारे मन प्यारिया जियो मित्रा हर लदे के पसबली मन प्यारिया जियो मित्रा हर दर निश्चल मली हर दर सेवे अलख पेवे निश्चल आसन पाया तै जन्म न मरना आवण जाना संसार दुख मिटाया चित्र गुप्त का कागत फारिया चमदू ता कछ न चली नानक सिख दे मन प्रीतम हर लदे के पसबली मन प्यारिया जियो मित्रा कर संता संग नमसो मन प्यारिया जियो मित्रा हर नाम जपत प्रगासो सिमर स्वामी सुखै गामी इच सगरी पुनिया पूर्वे कमाए श्री रंग पाए हर मलै चिर विछुनिया अंतर बहर सर्वत्र व्या मन उपजया विश्वसो नानक सिख दे मन प्रीतम कर संता संग नवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर प्रेम भगत मलीना मन प्यारिया जियो मित्रा हर जल मिल जीवे मीना हर पी अगाने अमृत माने सब सुखा मन उठे शीतल पाए मंगल गाए इस पुनी सतगुर उठे लड़ लीने लाए नौ नित पाए नौ सर्वस ठाकुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मलीना श्री राकेश अंत महला बन माई ओंकार सतगुर प्रसाद टकना अठ मजाहू मापिरी पासे क्यों दीदार संत सुनाई लभने नानक प्राण आधार संत चरण कमल स्यों प्रीत रीत संतन मना आवदे जियो तुतिया भाव बपरीत अनीत दासा न भाव दे जियो दासा न भाव है बिन दरसाए एक खिन तीरज क्यों करै नाम बिहूना तन मन ही ना जल बिन मछली ज्यों मरै मिल मेरे प्यारे प्राण धारे गुण साध संग मिल गावे नानके स्वामी धार अनुग्रह मन तन अंक समाई दखना सोहंदड़ो हब ठाए कोई ना दिसै डूजड़ो खुलड़े कपाट नानक सतगुर भेटते संत तेरे बचन उपापार संतन धार बाणी बीचारी जियो
सिमर सास गिरास पूर्ण विश्वास। क्यों मनो विसारी है जियो, क्यों मनो विसारी है निमुख नहीं टारी है, गुणवंत प्राण हमारे मन वांछित फल देत है, स्वामी जी की व्यथा सारे, नाथ के नाते सर्व कै साथे, जप जुगे जन्म हारी है, नानकी बिनती प्रभ है कृपा कर पाप लतारी है, लखना तूड़ी मजन साध खे साई थी कृपाल, लदे हबे थोकड़े नानक हर धन माल, संत सुंदर स्वामी धाम भगत है विश्राम, आसा लग जीवते जियो मन तने गलतान, सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीव दे जियो, अमृत हर पीव दे सदा थिर थीम दे, बिखे बन फीका जानिया पै कृपाल गोपाल, परा मेरे साध संगत निध मान्या, सर्वस्व सुख आनंद कन प्यारे, हर तन मन अंतर सीव ते एक तिल नहीं विसर, प्राण धारा जप जप नानक जीव ते टखड़ा, जो तो कीने अपने तिना को मिलियो, हे आपे ही आप मोहयो, जस नानक आप सुनियो, हे संत प्रेम ठकोरी पाए रजाए, कोविद मन मोहया जियो, संतन कै प्रसाद गाद कंठे लग सोया जियो, हर कंठ अलग सोया दुख सब जोया, भगत लखन कर बस पए मन सर्व सुख।

रतड़ा हर रंग रत। हर ध्याव हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जाणिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ। जिन का पूर्व लिखिया से आए मिलै गुरपास, सेक पाए बणजारिया मित्रा गुरु हर हर नाम प्रकाश। तन तन बणज पपारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रस। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। नानक गुरु तन पाया जिन्ना आप तुठा गुण दास। हार त्यावो साथ ग्रास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा हार। नाम जिन्ना रह रास राव सत प्रसाद श्री राग की वार महला चौथा श्लोका नाल श्लोक महला तीजा। रागा में श्री राग है जे सच तरे प्यार सदा हर सच मन वसै निचल मत अपार। रत्न मोलिक पाया गुर का शब्द चार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा श्री अकार। नानक सच्चे सतगुरु सेविया सदा सच पार। महला तीजा और बिरहा सब तावत है जब लग साहेब प्रीत ना होए ओहो मन माया मोया बेखड़ सुन ना होए। सह देखे बिन प्रीत ना उपजे अंधा क्या करे नानक जिन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी। हर इको करता एक इको दीवान हर हर इक सह दा है अमर इको हर चित तर हर तिस बिन कोई नाहे डर। भ्रम पाओ दूर कर हर तिसै नो सलाहे जे तु दरखे बार कर। हर जिस नो होए दयाल सो हर जप पाओ बिखम तर। श्लोक मला बेला दाती साहेब संधियां क्या चले तिस नाल इको जगन दे नाल हंदे एक ना सत्या दे उठा। सिद्ध को सपूरी साधका स

जियो। नाम जपत सर्व सुख पाइय, सब पौ बिनस हर हर त्याय, जिन सेव्या से परग्रामी कार सगले थी जियो। आए पै तेरी सुनाई, जियो पावे तू लह मलाई, कर कृपा प्रभ भगति लावो सच नानक अमृत पिए जियो। माज मल्ला पंजवा। ऐ कृपाल गोबिंद गुसाई, मेघ वर्षै समनी थाई, दीन दयाल सदा कृपाला ठाठ पाई, करतारे जियो अपने जी जंत प्रतपारे जियो। बारक माता समरे दुख भंजन सुख सागर स्वामी, देत सगल हरे जियो। जल तल पूरिहा मेहरबाना सद बलिहार, जाई है कुरबाना रहण दृंस ते सदा त्याई। जे खिन मैं सगल उधारे जियो, राख लिए सगले प्रभापे, उतर गए सब सुख संतापे। नाम जपत मन तन हरिया, बल प्रभ नानक नदर निहारे जियो। माज मल्ला बन मां, जिथे नाम जपिए प्रा प्यारे, सो अस्थल सोए न चौबारे। जिथे नाम न जपिए मेरे गोबिंदा, सी नगर उजाड़ी जियो। हर रुखी रोटी खाए संभाले, हर अंतर बाहर नदर निहाले, खाए खाए करे बद फैली, जान बिसू की बाड़ी जियो। संता से ती रंगना लाए, सख्त संग बिक्रम कमाई। दुर्लभ दे कोई अज्ञानी, जड़ापणी आप पाड़ी जियो। तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला, कर कृपा नानक गुण गा बैराखो, शर्म साड़ी जियो। माज मला पंजवा। चरण ठाकुर के हृदय समाणे, कल कलेश सब दूर पयाणे, शांत सुख सहज तुन उपजी, साधु संग निवासा जियो। लागी प्रीतना तो टैमूल, हर अंतर बहर रहा भरपूरे, सिमर सिमर सिमर गुणगामा, काटी जमकी फासा जियो। अमृत वरख है अनद वाणी, मन तन अंतर सांस माणी, तृप्त गाए रहे जन तेरे, सत गुर की दिलासा जियो। जिसका साथ इस्ते फल पाया, कर कृपा प्रभ संग मिलाया, आवन जाल रहे बड़भागी, नानक पूर्ण आसा जियो। माज महला परिमा, मीह पाया परमेश्वर पाया, जी जंत सब सुखी बसाया, गया कलेश पया सुख साचा, हर हर नाम समाली जियो। जिसके से तिन ही प्रतपारे, पार ब्रह्म प्रभ भये रखवारे। सुनी बेनती ठाकर मेर, पूर्ण होई काली जियो, सर्व जिया को देवनहारा, गुर प्रसादी नदर निहारा। जल थल मही अल साव तृप्ताने, साधु चरण बखाली जियो। मन की इच्छ पजावन हारा, सदा सदा जाई बलिहारा, नानक दान किया दुख भंजन, रते रंग रसाली जियो। माज महला पंजवा। मन तन तेरा, तन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी पर मेरा जियो, पिंड साहब रास तुम्हारी तेरा, जोर गोपाला जियो। सदा सदा तू है सुखदाई, निब निब लागा तेरी पाई, कार कमामा जे तुदभावा, जा तू देह दयाला जियो। प्रभ तुम ते लहना, तू मेरा गहना, जो तू देह सोई सुख सहना, जिथे रखे बिकुंठ ते थाई, तू सबना के प्रतपाला जियो। सिमर सिमर नानक सुख पाया, आठ पहर तेरी गुण गाया, सगल मनोरथ पूर्ण होए, कदे ना होए देखाला जियो। माज महला पंजवा। पार ब्रह्म प्रमेघ पठाया, जल थल मही अल दह दिस बरसाया, शांत पई बुझी सब तृष्णा, अंध पया सब ठाई जियो। सुखदाता दुख भंजन हारा, आपे बख्श करे जी सारा, अपने कीते नु आप प्रतपाले, पाए पैरी तिसे मनाई जियो। जा की शरण पया गत पाई, सास सास हर नाम त्याई, जिस बिन हो न दो जा ठाकुर, सब तिसे किया जाई जियो। तेरा मान तान प्रभ तेरा, तू सच्चा साहिब गुणी गहीरा, नानक दास कहे बिनती, आठ पैर तो त्याई जियो। माज मल्ला पंजवा। सबे सुख पए प्रभ तुठे, गुरपुरे के चरण मन उठे, सह समाध लगी लिवंतर, सो रस सोई जाने जियो। अगम गोचर सह मेरा, खटखट अंतर वर्त नेरा, सदा अलपत जी का दाता को बेला आप शरण जियो।

जग जीवन पर त्याग कै मानस संदियास। दुई भाई बगुची है गल पई सो जम की फास। जिहा बीजा सो लुणै मथै जू लिखियास, रैण विहाणी पछताणी उठ चली गई निरास। जिन को साधु भेटीए सो दरगह होई कलाश। कर कृपा प्रभु अपनी तेरे दर्शन होए प्यास। प्रभु तुर बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास। आसाढ़ सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास। सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार। मन तन रता सच रंग इको नामे आधार। बिखिया रंग कूड़ा व्या दतन सबे शार। हर अमृत बूंद सुहावणी मिल साधु पीवन हार। वनतन प्रभ संग बावलिया समृत पुरख अपार। हर मिलने नु मन लोचदा करम लावन हार। जिनी सखी प्रपाया हतन कै सर बिहार। नानक कर जी मया कर शब सुवारन हार। सावन तना सुहागणी जिन राम नाम उरहार। पादोए परम पुलाणिया दूजै लगा हेत। लख शिंगार बनाया कर जनाही केत। जित दिन दे बिनससी तित वेड़ा कैसन प्रेत। पकड़ चलाइन दूत जम किसे न देनी पेत। छड खड़ोते खिनै माहे जिनस्यों लगा हेत। हथ मरूड़ै तन कपे स्याहो होआ सेत। जेहा बीजै सो लुणै करमा संदड़ा खेत। नानक प्रभ शरणागति चरण बहित प्रभ देत। से भादोए नरक न पाइयै गुर रखण वाला हेत। असन प्रेम बाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए। मन तन प्यास दर्शन कणी कोई आण बिलावै माए। संसाई प्रेम की हो तिनके लागा पाए। वेण प्रभ क्यों सुख पाई है दूजी नाही जाए। जिनी चाख्या प्रेम रस तृप्त रहे आगाए। आप त्याग बिनती करै लेह प्रभु लड़ लाए। जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कतै न जाए। प्रभ बिन दूजा को नहीं नानक हर शरणाए। असू सुखी वसंदियां जिन्ना मया हर राय। कतक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। विमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। खिन मैं कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। विच न कोई कर सकै किस थैरू मैं रोज। कीता कुछ न हो वई लिखिया तुर संजोग। वडभागी मेरा प्रभ मिलै तां उतरै सब योग। नानक प्रभ राख लई मेरे साहेब बंदी मोच। कतक होवै साध संग बिनसै सबे सोच। मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़ियां। तिन की शोभा क्या गणी जे साहेब मेलणियां। तन मन मौलिया राम सो संग साध सहेलड़ियां। साजना ते बारी से रहने के लड़िया। तिन दुख ना कभू उतर ऐसे जमके वस पड़िया। जिनी रावया प्रभ अपना से दिसन नित खड़िया। रतन जवीर लाल हर कंठ न जड़िया। हां नानक बंश धूड़ तिन प्रभ शरणी दरपड़िया। हां मंगिर प्रभ राधना बाहू न जनबड़िया। पोख तुखार न व्या पई कंठ मिलिया हर ना। मन बेद्या चरणार बिन दर्शन लगड़ा शाह। उठ गोविंद गोपाल राय शिवा स्वामी लाह। बिख्या पो न सकई मिल साधु गुण गाह। जहां ते उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाह। कर गए लीनी पार ब्रह्म बहुर न बिछड़िया। बार जाऊं लख बेरिया हर सजने मैं गाह। शर्म पई नारायण नानक दर पईया। पोक सुहंदा सर्व सुख जिस बख्शे वे प्रवाह। माग मजन संग साधुआ तूड़ी करि स्नान। हर का नाम त्याए सुन सबना नो कर दान।
जन्म कर्म मल उतरै मन ते जाए गुमान। काम क्रोध न मोहियै बिनसै लोभ सुवान। सच्चै मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। अठ सठ तीर्थ सगल पुन जी दया प्रवान। जिसनों दिवै दया कर सोई पुरख सजान। जिन्हां मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुरबान। माग सुचे से कांडियै जिन पूरा गुर मेरवान। फल गुण अनद उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाई राम की कर कृपा दिया मिलाए। से सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नाहीं जाए। इचपुनी बड़भागणी वर पाए हर राय। मिल सहिया मंगल गाव ही गीत कुविंदिया लाए। हर जिहा अवर न दिसई कोई दूजा लवे न लवाए। हालत बल सुवारियों ने चल दितियां न जाए। संसार सागर ते रखियां बौड़ ना जन्मै ताए। जीवा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाए। फल गुण नित सलाहिए जिसनों तिल न तमाए।

दरगाह सच करी सर्व सुखा निधि चरण हर भउ जल बिखम तरी प्रेम भगतन पाईआ बिखिया नाहीं जरी। कूड़ गए दुबिधा नसी पूरन सच परे पार ब्रह्म प्रभ सेम दे मन अंदर एक तरे मां दिवस मूरत पड़े जिस को नदर करे नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे। माज महला पंजवा दिन रैन एक ओंकार सत गुरु प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रैन आप त्याग शरणी पवा मुख बोली मिठड़े वैण जन्म जन्म का विछड़िया हर सज्जन मिलू सैण जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन भैण हर पिर बिन चैन न पाइय खोज डिठे सब गैण आप कमाने विछड़ी दोष न काहू देण कर कर पव राख ले हो ना ही करण करेन हर तुदमन का कूलर ना कही है किथे वैण नानक की बेनंती है हर सुरजन देखा नैण जी की बिरथासो सुनै समृत पुरख पार मरण जीवन आराधना सबना का आधार ससर पी कंत की वड्डा जिस परिवार ऊंचा या गम या गात बोध किशंत न पारा वार सेवा सत सुभाव सी संतां की हुए शार दीना ना दयाल देव पतित उधारण हार आदि जुगादि रखदा सच नाम करतार कीमत कोई ना जानई को नाही तोलन हार मन तन अंतर वास रहे नानक नहीं शुमार दिन रहन जी प्रभु को सेव दे तिनकै सद बलिहार संत राधन सत सदा सबना का बख्शेंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दितीन जिंद गुर शब्दियां रहदी है जपी अंदर मलवंत कीमत कह ना जाई है परमेश्वर बेअंत जिस मन वसै नारायण सो कही है भगवंत जी की लोचा पूरी है मिले स्वामी कंत नानक जीवै जप हरी दुख सब ही हंत दिन रहन जिसना विसरै सो हरिया हुवै जंत सर्व कलां परपूर्णो मन मणि थाओ हर उठ गई मन अंदर जप जप जी मनाओ कर कृपा प्रभ अपनी जन तूड़ी संग समाओ ज्यों तू राखें त्यों रहा तेरा दत्ता पैना खाओ उद्दम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए ना सुजई किथे कुकण जाओ अज्ञान बिनासन तम हर नूचक म्या माओ मन विछुड़िया हर मिली है नानक ही सुवाओ सर्व कल्याणा तित दिन जित परसी गुर कै पाओ वार माज की तथा श्लोक महला पहला मलक मुरीद तथा चंद्रड़ा सोईया की तुनि गावनी एक ओंकार सत नाम करता पुरख गुर प्रसाद श्लोक महला पहला गुरदाता गुर हिवें घर गुर दी भगते लोए अमर पदार्थ नानका मन माने सुख होए महला पहला पहले प्यार लगा थन दुध दूजे माए बाप की सुध तीजे पैया भाभी बेब चौथे प्यार उपन्नी खेड़

कर वास अठवें क्रोध हुआ तन नाश, नामे तौले उबे सा, दसवें ददा हुआ सुआ, गए से गीत पुकारी ता, उड्या हंस दसाए राह, आया गया मोया नाओ, पिछे पत्तल सदे हो काम, नानक मनमुख अंध प्यार, बाज गुरु डुब्बा संसार। महला पहला। दस बाल तन बी सरवण, तीसा का सुंदर कहावे, चालीसी पुर होए, पचासी पग खिसें, सठी कै बुढ़ी पायावे, सत्तर का मतहीन, असियां का व्यवहार न पावे, नब्बे का से जासनी, मूल न जाने आप बल, टंडोलम ढूंढम डिठ में, नानक जग तुएं का तौलर। पौड़ी। तू करता पुरख अगम है, आप सृष्टि उपाति, रंग परंग उपार, जिन्ना बाबा बिद भांति, तू जाने जिन्हें उपाई है, सब खेल तमाती। एक आवे है एक जाहे उठ, बिन नावे मर जाती, गुरमुख रंग चलूलिया, रंग हर रंग राती, सो सेवो सत निरंजनो, हर पुरख बदाती, तू आपे आप सुजान है, वड पुरख वडाती, जो मन चित तुद ध्याय दे मेरे सचिया, बल बल हौ तन जाती। श्लोक महला पहला। जियो पाए तन साजिया, रखिया बणत बनाए, अखी देखै जीवा बोलै, कन्नी सुरत समाए, पैरी चलै हथी करना, दत्ता पैन खाए, जिन रच रचिया तिसे न जाने, अंधा अंध कमाए, जां भजै तां ठीकर होवै, घड़त घड़ी न जाए, नानक गुरबिण नाहे पत, पत बिन पार न पाए। महला दूजा। दिन दे थावों दिता चंगा, मनमुख ऐसा जानिए, सुरत मत चतराई ता की, क्या करिया कवखाणी है, अंतर बहके कर्म कमावे, सोचो कुंडी जानिए, जो धर्म कमावे तिस धर्म ना होवे, पाप कमाने पापी जानिए, तू आपे खेल करें सब करते, क्या दूजा अक बखाणी है, जिचर तेरी जोत चिर ज्योति, बई तू बोलै मन ज्योति, कोई किश करो दिखा सियाणी है, नानक गुरमुख नदरी आया, हर को सुगड़ सुजाणी है। पौड़ी। तुद आपे जगत उपाय कै, तुद आपे धंद लाया, मूठ गौली पाए कै, तुद आपो जगत खुवाया, तृष्णा अंदर अगन है, ना तिपतै भुखा त्याया, संसाई संसार है, मर जमै आया जाया, बिन सतगुर मूह ना टुटई, सब थके कर्म कमाया, गुरमती नाम ते आई है, सुख रजा जा तुड़ पाया, कुल उधारे अपना, धन दिने दी माया, सोभा सुरत सुहावनी, जिन हर सेती चित लाया। श्लोक महला दूजा। अखी बाजों वेखना, विण कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना, विण हत्थां करना, जीबे बाजों बोलना, इहों जीवत मरना, नानक हुकम पछाण कै, तौ खसमै मिलना। महला दूजा। दिसै सुनिया जानिया, साव न पाया जाए, रोला टुंडा अंधड़ा, क्यों गल लगै ताई, पै के चरण कर भाव के, लोइन सुरत करी, नानक है सियाणीए, इवकंत मिलावा होए। पौड़ी। सदा सदा तू एक है, तुर दूजा खेल रचाया, हौ मैं गर्भ उपाय कह, लो बंतर जनता पाया, ज्यों भावै त्यों रख, तू सब करे तेरा कराया,
ਇੱਕ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਲ ਲੈ ਗੁਰਮਤੀ ਤੁਧ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਖੜੀ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਚਾਕਰੀ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਹੋਰ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਹੋਰ ਕਾਰ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਲਾਇਆ, ਪੁੱਤ ਕੱਲਾ ਤਕਟੰਬ ਹੈ ਇੱਕ ਲਿਪਤ ਰਹੇ ਜੋ ਤੁਰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲੇ ਸੱਚੇ ਨਾਇ ਸਮਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋਇਨੀ ਕੈ ਪਰਬਤ ਗੁਫਾ ਕਰੀ ਕੈ ਪਾਣੀ ਪਿਆਲ, ਕੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਕੈ ਆਕਾਸ਼ੀ ਉਰਦ ਰਹਾ ਸਿਰ ਪਾਰ, ਪੁਰ ਕਰ ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਪਹਿਰਾ ਧੂਆਂ ਸਦਾ ਕਾਰ, ਬੱਗਾ ਰੱਤਾ ਪੀਲਾ ਕਾਲਾ ਬੇਦਾਂ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ।

सतगुरु दयाल त दुख न जानिए, सतगुरु होए दयाल ता हर रंग माणिए, सतगुरु होए दयाल ता जम का डर किहा, सतगुरु होए दयाल ता सद ही सुख देहा, सतगुरु होए दयाल ता नवनिध पाई है, सतगुरु होए दयाल ता सच समाई है। श्लोक महला पहला। सिर खोहाए पीवै मलवाणी, जूठा मंग मंग खाही, फोल फदीहत मोह लैण पड़ासा, पानी देख संगाही। भेड़ां वांगी सिर खोहायन, भरियन हथ सुवाही, माऊ पीऊ किरत गवायन, टब्बर रोमन ताही। ओना पिंड ना पत्तल किरिया, ना दीवा मोए किथाहूं पाही, अठ सठ तीर्थ देण न ढोई, ब्राह्मण अन्न न खाही। सदा कुचील रहें दिन राती, मत्था टिके नाही, झुंडी पाए बहन नित मरने, दड़ दी बाण न जाही। लक्की कासे हथी फुम्मण, अगों पिछी जाही।

0: वावा साचे मैं तेरी टेक, हों पापी तू निर्मले करहाओ, अगन पानी बोले पड़वाओ, जीवा इंद्री एक सुवाओ। दिष्ट विकारी नाही पाओ पाओ, आ मरे तं पाए नाओ, शब्द मरे फिर मरण न होए, बिन मूए क्यों पावे होए। शब्द मरे फिर मरण न होए, बिन मूए क्यों पूरा होए, परपंच व्यापरया मन दोए, थिर नारायण करे सो होए। बोहित चढ़ो जाया वै वार, ठाके बोहित दरग हमार, सच सलाही धन गुरुद्वार, नानक दर कर एक अंकार।
1: कौड़ी महला पहला, उल्टो कमल ब्रह्म विचार, अमृतार गगन दास द्वार, त्रैबण वेद्या अमरार, रे मन मेरे परम ना कीजे, मन मानिए अमृत रस पीजे, रहाओ। जन्म जीत मरण मन मानिया, आ मुआ मन मन ते जानिया, नजर पई कर करते जानिया, जत सत तीर्थ मजन नाम, अनेक विसार करो किस काम, नर नारायण अंतर जाम, आन मानो तो पर कर जाओ, कह जाचो नाही को थाओ, नानक गुरमुख सह समाओ। गौड़ी महला पहला। सतगुर मिले तां मरण दिखाए, मन रहन रस अंतर पाए, गर्भ निवार गगन पुर पाए, मरण लिखाए आए नहीं रहना, हर जप जाप रहना हर सरना, रहाओ। सतगुर मिले तां दुविधा भागे, कमल बिगास मन हर प्रभ लागे, जीवित मरे महारस आगे, सतगुर मिलिए सर संजम सूचा, गुर की पौड़ी ऊंचो ऊंचा, कर्म मिले जम का भौ मूचा, गुर मिलिए मैलंक समाया, कर कृपा कर मैल दिखाया, नानक होमे मार मिलाया। गौड़ी महला पहला। किरत प्या ना मेटे कोए, क्या जाना क्या आगे होए, जो तिस भाणा सोई हुआ, अब न करने बाला दुआ, ना जाना कर्म केवट तेरी दात, कर्म धर्म तेरे नाम की जात, रहाओ। तू एवट दाता देवन हार, तोट नाही तुद भगत भंडार, किया गर्भ ना आवे रास, ज्यो पेंड सब तेरे पास, तू मार जवाले बख्श मिलाए, ज्यो भावी त्यो नाम जपाए, तू दाना बीना साचा सर मेरे, गुरमत दे भरोसे तेरे, तन में मैल नाही मन राता, गुर बचनी सच शब्द पछाता, तेरा तान नाम की बड़ियाई, नानक रहना भगत शरण आई। गौड़ी महला पहला। जैन अकथ कहाया प्यो पी आया, अन पै बिसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डरे समाना, पूरे गुर के शब्द पछाना, रहाओ। जैस नर राम हृदय हर रास, सहज पाए मिले साबास, जाहे सवारे साज ब्याल, एतत मन मुख बादे काल, एहनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले परम दूरे। गौड़ी महला पहला। जन्म मरे त्रै गुण हितकार, चारे वेद कथे आकार, तीन अवस्था कहे बखियान, तुरिया अवस्था अवस्था सतगुर ते हर जान, राम भक्त का गुर सेवा तरना, बोर जन्म ना होए है मरना, रहाओ। चार पदार्थ कहे सब कोई, सिमरत सासत पांडत मुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जाके हृदय बसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा माहे निराश बुझाया, दीना नाद सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਇਆ ਰਹੇ ਸੁਖਾਲੀ, ਬਾਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰੋ ਲੱਭ ਲੋਭ ਮੁਚ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਉਠਾਵੇ ਭਾਰੋ। ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਰੁਲਦੀ ਦੇਖੀ, ਜਿਉਂ ਤਾਂ ਰੂਪਰ ਸ਼ਾਰੋ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੀ, ਸੁਕਦਰਾ ਕੀਤਾ ਰਹਿਸੀ ਮੇਰੇ, ਜੀੜੇ ਬੋ ਨਾ ਆਵੇ ਬਾਰੀ ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਦਾਖਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਚਿੰਦਾ ਕਰੇ ਪਰਾਈ, ਝੂਠੀ ਲਾ ਇਤਵਾਰੀ। ਬੇਲ ਪਰਾਈ ਜੋਹਰੇ ਜੀੜੇ, ਕਰੇ ਚੋਰੀ ਬਰਿਆਈ। ਹੰਸ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਏ, ਛੁੱਟੜ ਹੋਈਏ ਨਾਰੀ, ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਰਹੇ ਸਪਨਾਂਤਰ, ਤੁਦ ਕਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੀਆ, ਤਾਂ ਮਨ ਭੱਲਾ ਪਾਇਆ। ਹਲਤ ਨਾ ਸੋਭਾ ਪਲਤ ਨਾ ਢੋਈ, ਐਹਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ, ਹੁਣ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਰਹਾਓ। ਤਾਜੀ ਤੁਰਕਾ ਸੋਇਨਾ ਰੁਪਾ, ਕੱਪੜ ਘੇਰੇ ਪਾਰਾ ਕੈਸ਼

जा रहाऊ। सब सुरती मेल सुरत कमाई, सब कीमत मेल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहण न जाई तेरी तिल वडियाई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धां पुरखां कियां वडियाईया। तुद मेण सिधी किनै ना पाईया, करम मिलै नाहीं ठाकुर हाईया। आखण वाला क्या विचारा, सिवती भरे तेरे भंडारा। जिस तू दे तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा।